0: तामसान आप क्या लेंगी?
1: ताम फैसला नहीं कर पाती और पूछती है,
2: दोरेगा इच्छिबान ओइशी देस का?
0: कौन सा सबसे मजेदार है?
1: कायतो जवाब देता है,
3: मिसो रामेन गा ओसुसुमे दा यो।
0: मैं मिसो रामेन तजवीज करूंगा।
1: ताम जेरे लब कहती है,
2: मिसो रामेन,
0: मिसो रामेन।
1: ताम को याद आता है कि यूकी ने उसे वियतनाम में क्या बताया था,
3: निहोन नो रामेन वा ओइशी यो,
0: जापान का रामेन मजेदार है।
3: बोकु वा मिसो रामेन गा सुकी नांदा,
0: मुझे मिसो रामेन पसंद है।
1: ताम यूकी की बात को याद करके कहती है,
2: वताशी मिसो रामेन नी शिमास,
0: मैं मिसो रामेन लूंगी।
1: लगता है मिसो रामेन ने ताम की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है,
0: बल्कि उसके दिल के तारों को छेड़ दिया है। तो आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
3: ご注文は？タムさん、何にする？
2: どれが一番おいしいですか？
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, कौन सा सबसे मजेदार है?
2: दोरेगा इच्छिबान ओइशी देसु का?
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीजों में से सबसे बेहतर के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं।
0: दोरे के मायने है कौन सा, इसके बाद का गा जाहिर करता है कि दोरे जुमले का मौजू है, इच्छिबान का मतलब है अव्वल या सबसे ज्यादा, और ओइशी यानी मजेदार, चुनांचे इच्छिबान ओइशी का मतलब हुआ सबसे मजेदार, और आखिर में देस का लगाते हुए उठान के साथ अदायगी के जरिए जुमला सवालिया हो जाता है। आज का नुक्ता, मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर की निशानदेही करने के लिए इच्छिबान का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जायके में अव्वल या सबसे मज़ेदार के लिए मज़ेदार यानी ओइशी से पहले इच्छिबान लगाकर इच्छिबान ओइशी बनाया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ों में से अव्वल नंबर के मुतालिक सवाल करने के लिए दोरेगा इच्छिबान पूछा जाएगा, इसमें दोरे के मायने है कौन सा,
1: यानी खाने पीने की कुछ चीजें सामने हों और उनमें से सबसे मजेदार चीज कौन सी है पूछना हो तो दोरेगा इच्छिबान ओइशी देसु का पूछेंगे, ठीक है ना?
0: जी बिल्कुल ठीक।
1: तो सामने सुनिए और दोहराइए,
4: ओइशी देसु, इच्छिबान ओइशी देसु, दोरेगा इच्छिबान ओइशी देसु का।
1: जी सामईन, उम्मीद है आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
0: अब सबसे बेहतर के इंतखाब से मुतालिक एक मकालमा सुनिए। एक गाहक जापानी मिठाइयों की दुकान में है और बेहतरीन मिठाई का इंतखाब करना चाहता है।
2: दोरे गा इच्छिबान निंकी गा अरिमासु का?
3: कोरे गा ओसुसुमे देसु।
0: अब इस मकालमे की तशरीह,
2: दोरेगा इच्छिबान निंकी गा अरिमासु का,
1: कौन सी सबसे मकबूल है?
0: निंकी गा अरिमासु यानी मकबूल है, इसमें निंकी या मकबूल दरअसल ना इसमें सिफत है और अरिमासु फेल आरु यानी होना की मास शक्ल है।
3: कोरे गा ओसुसुमे देसु,
1: मेरी तजवीज ये है।
0: कोरे यानी ये और ओसुसुमे यानी तजवीज या सिफारिश।
1: तो सुनिए और दोहराइए,
4: निंकी गा अरिमासु, इच्छिबान निंकी गा अरिमासु, दोरे गा इच्छिबान निंकी गा अरिमासु का।
0: अब कुछ और खसूसियात में अव्वल मालूम करने की मशक करें। फर्ज करें कि आप सूटकेस खरीदने के लिए किसी दुकान में हैं और दुकानदार से पूछना चाहते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है। सस्ता की जापानी है
4: यासुई, यासुई।
0: तो सामीन कोशिश करें, अब फर्ज करें कि आप किसी रेस्तोरान में हैं जहां बहुत सी अकसाम के सेट मेन्यू हैं। आपको सेट में मौजूद हर चीज़ की अलग अलग कीमत नहीं मालूम, चुनांचे आप वेटर से पूछना चाहते हैं कि इनमें सबसे बाकिफायत सेट कौन सा है। बाकिफायत की जापानी है
4: ओतोकुना, ओतोकुना।
0: ये ना इसमें सिफत है, जब ना इसमें सिफत जुमले के आखिर में हो उसका आखिरी हिस्सा ना हटाकर उसकी बजाय देस लगाया जाता है। तो सामीन आप किस तरह पूछेंगे, سب سے باکفایت کون سا ہے؟
3: どれが一番お得ですか?
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں ویٹر نے استعمال کیا ہے
5: گوچومون وا.
0: گوچومون وا کے معنی ہے آپ کیا لیں گے. ریستوران یا کیفے میں ویٹر گاہک سے آرڈر لینے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. چومون کا مطلب ہے آرڈر. اس سے قبل کا گو گاہک کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے. یعنی گوچومون وا کا لفظی ترجمہ ہوا آپ کا آرڈر. اس کے بعد کا حصہ کیا ہے بغیر کہے بھی واضح ہے اس لیے حذف کر دیا گیا ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
6: گوچومون وا.
7: گوچومون وا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں کائتو مختلف چیزوں میں سے انتخاب پوچھتا ہے.
5: گوچومون وا تام سان نانی نی سرو
8: دورے گا ایچیبان اوئیشی دیس کا
5: میسو رامن گا اوسسمے دا یو
8: میسو رامن.
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
8: 私、味噌ラーメンにします。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブカーネケシャキンカイトケマシュロンカカーナル。アシカモズ、ラーメンヘ。
0: ラーメン、ヌードルズディッシュヘ。グンデウエアテキバリクパティオンエヌードルズコ。گرم پانی میں ابال کر پیالے میں سوپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اس میں اوپر سے ابلے ہوئے انڈے، گوشت کے پارچے یا سبزیوں جیسی ٹاپنگز ڈالی جاتی ہیں. یہ بنیادی طور پر چینی پکوان ہے. تاہم جاپان میں منفرد تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد اب یہ جاپان کی نمائندہ ڈشوں میں سے ایک ہے.
1: ویسے رامن کئی اقسام کے ذائقوں میں بھی دستیاب ہے.
0: جی ہاں، رامن کا سوپ مرغ اور خنزیر کی ہڈیوں یا سی فوڈ وغیرہ سے بنتا ہے. ذائقے کے لیے اس میں میسو کی پھلیوں کا پیسٹ، نمک یا سویا سوس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کوئی چیز نہیں کھاتے تو پہلے سے اس کے اجزاء دریافت کر لینا بہتر ہوگا. اب بعض دکانوں میں حلال، الرجی سے پاک یا صرف سبزیوں کے اجزاء سے تیار کردہ رامن بھی دستیاب ہیں.
1: اور اب تو رامن کے نت نئے ذائقے بھی دستیاب ہیں.
0: جی ہاں، باورچی نئے ذائقوں کی تیاری جاری رکھتے ہیں. مثلاً اب پنیر اور گاڑی کریم کے ذائقے بنائے گئے ہیں. کئی علاقوں میں وہاں کے مخصوص انداز کے رامن بھی ہیں. مقامی کھانوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی ذائقوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں.